नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आधिकारिक घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ

0: मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर

0: इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में

0: आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
1: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
2: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
0: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717117 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे, भारत

0: संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज स्पेशल बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added टू द इंडिया फ्रांस डीप कल्चरल रिलेशनशिप।
3: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was been used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Sri Venkateshwara College of the University of Delhi will remain closed today in the wake of the tragic building collapse. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, said that it received 11 patients who sustained injuries in the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Of the 11 patients, 5 were brought dead to the trauma center, while another patient who was in critical condition later succumbed to his injuries. According to the AIIMS, 3 patients have been admitted and are undergoing treatment. One patient underwent limb surgery, while another who sustained minor injuries was discharged after being kept under observation. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification and reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program, while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aim to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It said the reform should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah will chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. The meeting has been organized by the Interstate Council Secretariat of the Ministry of Home Affairs, MHA, and hosted by the Goa government. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from a correspondent.
4: Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, will participate in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the center and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level can be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's Police Colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: This is Akashwani giving you the news.
1: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
2: The 7 core OPEC plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman, met virtually yesterday to review global market conditions and outlook. They decided to keep its oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. We have a report.
5: The decisions come after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of

श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं जरा सोचिए, सेहत की नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है? किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि हमारी थाली से, है ना? हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और आज है उसका आखिरी दिन 7 सितंबर, जिसका मकसद है लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, क्योंकि सही पोषण सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि बच्चों के विकास, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद भी तैयार करता है। घर की रसोई से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी और समुदाय तक संतुलित थाली, स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फल सब्जियों और सही खानपान की आदतों की बात पहुंचाने का ये दिन है। और क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हर दिन की थाली में किए गए एक छोटे से सही चुनाव से होती है। तो श्रोताओं, आज हमारा कार्यक्रम पिटारा सेहतनामा ये इसी पर केंद्रित है, पोषण विषय पर। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, तो आप इसे सुनना ना भूलिएगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का है और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत कलयुग फिल्म का। अलीशा चिनॉय की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं आपको बता दें कि आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस। जी हाँ, यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन। आसान भाषा में समझें तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद DMD जीन में बदलाव के कारण होती है। इसमें शरीर में डिस्ट्रॉफिन नाम का एक जरूरी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। बचपन में चलने फिरने में देरी, बार बार गिरना या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। यानी आज का दिन यही संदेश देता है, सही जानकारी सही समय पर पहचान ली जाए और संवेदनशील सहयोग ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और जागरूकता का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि समाज मिलकर ड्यूशेन से जूझ रहे हर बच्चे और उसके परिवार के साथ सहयोग और संवेदना की एक मजबूत कड़ी बने, क्योंकि कभी कभी साथ का एक छोटा सा कदम भी किसी के सफर को थोड़ा आसान बना सकता है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सितारे जमीन पर, इस फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्य कुमार की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी के साथ अभी वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम निर्देशक पी एल संतोषी पर केंद्रित रहेगा, जो कि आप सुन सकते हैं 9:30 पर सुबह और पुनः रात 9:30 पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। क्रिश फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में। विजय अकेला का लिखा गीत और राजेश रोशन का संगीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदनान सामी का गाया ये गीत फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से। समीर का लिखा गीत है, अदनान सामी का कंपोज किया।

अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत बैड बॉय। इस फिल्म से हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर की आवाजों में विनित सिंह ने साथ दिया है। कुमार के बोल और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर, साथ ही विनित सिंह की आवाजों में बैड बॉय फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के कदीलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देव आनंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: love you.
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

सज्जन भाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी 4 गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का। आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबला बू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबला बू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

एन संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

1957 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थी जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। यह फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में यह एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीत में बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शा वाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

पीएल संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सूरज ढलने के बाद एक शमा हमें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाती है। जब अंधेरी रातों में जी घबराता है, शमा अंधेरों को चीरती रोशन होती है और अंधेरों से लड़ना सिखाती है हमें। कहीं इश्क मोहब्बत, कहीं इंसानी इल्म और समझ का रास्ता दिखाती है न सिर्फ शमा, बल्कि वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग जो हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आते हैं, शायद शमा की ही तरह हैं, बेशक शमा की तरह हैं। और जिंदगी में अगर परवाने की बात की जाए तो परवाने की तरह हमारे लक्ष्य सधे होने चाहिए, चाहे रास्तों में कितनी भी अड़चने आए। और इसको ही लेकर एक इबारत हमने आज www.facebook.com/vbsmumbai के इस पते पर पोस्ट की है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसे पढ़ा भी है और हमारे नए श्रोताओं के लिए, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये इबारत हम पढ़ देते हैं एक बार। शाम ढलते ही दरों दीवार पर शमा रोशन कर दी जाती है। अंधेरी रात के साए जब घरों और महफिलों में शमा रोशन होती है, चेहरे पर चांदी सी बिखर कर पास बिठाती है और कहती है, मेरे महबूब, दो हंसों के जोड़े की तरह हम शमा परवाने इल्म की रोशनी, सच्चे प्रेम और समर्पण की दास्तान है। देखो ये रात ढलती जाए है, लेकिन वो चुप रहे। प्यार की आबरू कुछ जफाओं, कुछ वफाओं की खातिर। परवाने ने कहा, प्यार तो दीवाना होता है, तू शमा मोहब्बत की रोशनी के लिए जली, एक लक्ष्य, एक जुनून की मिसाल बनी। आज की रात जो बसर हो गई, तेरी आगोश में जलने को फिर आऊंगा, सदियों पुरानी ये मिसाल फिर दोहराऊंगा। शमा तड़प कर बोली, मिटने की तकदीर तो दोनों की है, मेरे महबूब आज की रात तो न जा। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

महिपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, इंदिवर के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आमतौर पर शम्मा परवानी की दास्तान को आत्मघाती आकर्षण का रूपक माना जाता है, लेकिन आज की इबारत में शम्मा को इल्म की रोशनी और एक लक्ष्य का प्रतीक बनाकर प्रेम को उच्चतर अर्थ दिया गया है। परवाने का शमा की ओर खिंचाव महज अंधा मुंह नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य के प्रति एक सजग जुनून है। एक और श्रोता ने लिखा है, इस इबारत में प्रेम की गहराई विरह इंतजार जफा वफा और शमा परवाने के प्रतीकात्मक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इल्म की रोशनी, लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण का संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत खूबसूरत है, इस बेहतरीन लिखावट में छुपे शब्दों के आधार पर आज सुरीला सफर में ये सदाबहार पुराने नगमे हो सकते हैं। शमा परवाने की बात है और कुछ गीत भी इन्होंने बहुत सारे गीत सुझाए भी हैं और भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने शमा परवाने के बारे में लिखा है। वैसे आपको बताएं श्रोताओं कि शमा शब्द पर जाने कितनी ही कविताएं लिखी गईं, जाने कितने ही शेर, जाने कितने ही अल्फाज और उद्गार बताए गए। दुनिया बदली, दौर बदले, लेकिन शमा उसी शान शौकत से आज भी जलती है। आपको कलाकार और फिल्म बताने हैं।

क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो शमा की तरह रोशनी बनकर आया, तो आप जरूर लिख सकते हैं। फिल्म अलबेला का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता बल्कि चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार इल्म या ज्ञान का दिया इंसान की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, उसके विचारों को नई दिशा देता है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर पाता है। ज्ञान का दीपक अनश्वर होता है, खूब तेज इल्म जिसे कोई चोर भी ना ले सके। कोई अगर आपने अपने लिखे हुए शेर शमा पर लिखे हैं तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं, और कोई गीत अगर शमा पर लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं। वैसे लाइट्स तो सभी को अच्छी लगती है, और खासकर तब जब अंधेरों में जलती है। लैंप, झूमर, लालटेन, दिए, मोमबत्ती, यानी तमाम जो शामें होती हैं वो इससे जगमगाती हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं श्रोताओं जो इसी तरह के सिचुएशन में फिल्माए गए हैं। आपको इनमें से कोई गीत जो पसंद हो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, कभी देखा है शमा को गौर से जलते हुए, वो परवाने की चाह में अपने को मिटा देती है और उफ तक नहीं करती। प्रेम की सबसे गहरी भाषा है शमा, किसी से गहरा प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद कभी मत करना, बस चुपचाप किसी जलती शमा के पास बैठना। जो कला जो हम में से हर एक को आनी चाहिए वो है शमा का शुक्रिया कहने का। वो कैसे अपने को जलाकर तुम्हारी शाम और रात रोशन करती है। शमा खुद जलती है और हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। शमा ही तो सृजन का मूल स्रोत भी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढलते ही घरों की दीवारों पर रोशनी के लिए लालटेन या चिमनी जलाकर उजियारा किया जाता रहा। ये दौर तो नहीं देखा पर जब इन्वर्टर नहीं आया था तब बरसात के मौसम में आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बंद होने पर 2-3 दिन तक चिमनी की रोशनी में ही रहे। श्रोताओं ऐसा तो होता है, और फिल्मों में बहुत सारी जगहें ऐसी भी दिखाई गई हैं जब बैलगाड़ी जाती है और उस पर लालटेन की रोशनी होती है। ऐसा भी कोई गीत, कोई सीन आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बता सकते हैं।

पहले जो अलबेला का गीत, फिल्म अलबेला का गीत हमने आपको सुनाया, भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और ये गीत था पुनर्मिलन फिल्म से अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामू की बारात बैलगाड़ी में गई थी तो बहुत मजा आया था जब मैं छोटी थी। यानी कि बैलगाड़ी में अगर कोई रास्ता ऐसा होता है श्रोताओं, तो उसमें जरूर रोशन होती है शमा, किसी लालटेन के तौर पर या चिमनी के तौर पर। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा परवाना, दीपक पतंगा और ढलती हुई रात, इनका रिश्ता बिना शर्त मोहब्बत, त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। इस गहरे और रूहानी रिश्ते ने सभी को आकर्षित किया है। ये कोई साधारण जलना नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि लो दीपक की जलती है राह दिखाने के लिए, परवाना मचल जाता है खुद को मिटाने के लिए। जी हाँ, रिश्तों में भी ठीक ऐसा ही होता है कि रिश्तों में आजकल समर्पण कम देखने को आता है। तो इस बारे में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जो पढ़ाई जब हम कभी करते थे तो शमा की रोशनी में अक्सर पढ़ाई की जाती थी, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि शमा जलती रही अपनी रोशनी में, परवाना मिटता रहा उसकी चाहत में। इश्क भी कितना अजीब है, जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसी पर दिल सबसे ज्यादा आता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, शमा केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, समर्पण और उम्मीद की मिसाल है। शमा की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला बड़ा होता है, दूर तक प्रकाश फैलता है। इंसान कभी अगर अपने भीतर की अच्छाई, प्रेम और संवेदना की लौ जलाए रखे तो किसी के जीवन का अंधेरा कम कर सकता है। शायद इसीलिए शमा हमेशा से उम्मीद, प्रेम और त्याग का खूबसूरत प्रतीक रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है श्रोताओं, कि हृदय में हमेशा, दिल में एक शम्मा जलती रहनी चाहिए। ये दो अभिनेत्री कौन हैं और ये किन के बारे में बात कर रही हैं?

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का, शकील बदायूनी का लिखा। एक श्रोता ने लिखा है, बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम, हीरामन हीराबाई को लेकर फरबीजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म, और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए यह नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। धर्मेंद्र पर फिल्माया गया और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप है जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डरकर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक शमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई शमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और शमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मीनू मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती है कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है, मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है, पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोता, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर तक।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग है अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

0: cancelled 10 memu trains today due to rising water level of the Son River at railway bridge number 21 near Punpun. Nidhi Shree for Akashwani News, Patna.
1: Monsoon has hit Madhya Pradesh once again in full force. With two weather systems active, heavy rain has been forecast for the next 4 days and its effect is already visible on the ground. More from our correspondent.
2: Two monsoon systems formed over the upper part of the state have changed the weather pattern. The weather department has issued a heavy rain warning for 6 districts of the Rewa and Sagar divisions named Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna and Rewa. Meanwhile, around 40 districts of the state including Indore, Ujjain division will continue to see light to heavy rainfall. The impact of the rain was clearly visible in the capital city Bhopal, where 2 gates of the Kalia South Dam had to be opened once again. Before this, 4 gates were opened on Saturday night to release water. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
1: The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu till tomorrow. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,355. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan, followed by Navalparasi East. In tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz have stormed into the quarterfinals of the US Open. In the women's singles round of 16 yesterday, Belarusian top seed Aryna Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4, 6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरिना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
4: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से

0: जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्यिक कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं। खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक के अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी

0: आयुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
1: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है करते हैं, और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
5: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में

0: बाकीदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 स्टूडेंट कम के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालेंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717106 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

अनपढ़ इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज। प्यार ही प्यार इस फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जय किशन ने मोहम्मद रफी की आवाज में प्यार ही प्यार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: दान सिंह का सर्वाधिक ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी। मुकेश की आवाज में ये नगमा था माय लव फिल्म से। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गंगा की लहरें फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत, सदाबहार नगमे कार्यक्रम की यही है श्रोताओं आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के।
2: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहाँ रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूंछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो, तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते, और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का बताना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे, और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढी तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुककर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ

0: इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत ला हौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया, चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई, बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा, इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा,
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मैं साहब, मेरे क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
0: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
2: बाबू साहब, बाबू साहब।
0: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
2: नहीं।
0: मियां राहत ने ठंडी सांस ली, तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
2: हाँ।
0: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली, अरे भाई कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
2: बाबू साहब उस दिन की बात तो आपको याद है ना, जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
0: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
2: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस

0: नई पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
1: हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना।
0: बाबू साहब यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
1: अरे तो फिर इससे क्या?
0: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
0: बाबू साहब ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है, इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
0: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह, इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
0: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा कलुआ कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए, भूखा मारेगा। हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, ले नौकरी छोड़ने का मजा ले, ले मजा ले।
1: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
0: हाय इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशे दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना।

0: था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध है, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध है, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतरराष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही है, और इसीलिए पुलिस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी है। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी, तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है, और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं, ये

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कर रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
1: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा, हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था, और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते हैं।
0: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना, हाँ, तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था, कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है, कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर।
0: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं, बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
1: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा, और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
0: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं लिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि किस कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल। और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन ले।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन बनने के बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी

0: भी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे सा आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताजा फेटा हुआ दही करीब 1 कप लेना है। सौंफ पाउडर 1 बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी, वो 1 बड़ा चम्मच लेना है। 2 चुटकी हमें हींग लेनी है। और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सके। और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं, इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है। और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए 1 कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सोंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे, थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है। उसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं, थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो हैं वो तैयार हैं।
1: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना, सुनाते हैं।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोले बताएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखते हैं वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या

0: आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझे ये जो जरूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
0: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
0: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपके थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से।
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग चौली राजमा छोले इसमें से आ जाता है, अगर आप दूध लेते हो तो दूध पनीर इसमें से आ जाता है, और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है, और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, तो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाले, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ,
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: ज्वारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

0: स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां है, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटी छोटी अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा छोले पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके।

0: अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से,
1: बिल्कुल हाँ,
0: तो
1: रिजिड होते हैं
0: बहुत
1: वो।
0: रिजिड होते, तो ऐसे वक्त भी दिक्कत आपको बहुत आ सकती है, मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है, क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है, और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ, और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगे, ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं।
1: जी
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा, मगर मौसम के आधार पे जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में हम उसको जो
1: पत्ती
0: वो
1: वाली सब्जी
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा
1: अच्छा
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में।
1: जी
0: नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये दो चीजें अलग अलग है,
1: जी जी
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते
1: जी
0: हैं। नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए, अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है, वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं पंकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है, तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल,
1: जी जी
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।

0: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
1: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उसे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो
0: जी
1: उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
0: जी उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: जाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए, वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी के ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है, ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिंस मिनरल्स, आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया

0: थोड़ा सा उल्टी होना, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं,
1: जी
0: कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के तीन ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे एक चौथाई धान है, एक चौथाई प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
1: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
0: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है, मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है, प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिंस जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाते हैं। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है, आप ज्यादा करोगे तब आपके परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण

0: चला जाता है।
1: जी बिल्कुल, एक गाना सुने।
0: जी
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सो ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे संतुलन पे आपके काम पे सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा।
1: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है,
0: ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत ज्यादा, जैसे

0: लकड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती
1: जी
0: है। तो आपके शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप तीन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपके खाने का समय और मात्रा। ये तीन चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुयम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारे गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाए, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटेशन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो
1: जी
0: और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन,
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है।
1: जी
0: जैसे कि आपको एडीएचडी है, डिप्रेशन है, एमडीडी है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
1: जी
0: मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे एडीडी है या एडीएचडी है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज सब्जी फल या कोई धान है दाल है इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे
1: बिल्कुल
0: ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई

0: हर दिन का एक फल चाहिए, और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा,
1: जी
0: आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं। अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और
0: चलो
1: चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है, बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता है।
0: जी
1: अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग, जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना
0: जी
1: संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके
0: बिल्कुल
1: आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है,
0: मुनगा,
1: वो इतना
0: सही
1: आयरन
0: जाए।
1: रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए।

0: ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितने तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
1: जी बिल्कुल,
0: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी

0: जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी है, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
1: जी।
0: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
1: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
0: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम
1: जी,
0: यहाँ पे 200 300 ग्राम 4 लोगों के परिवार के लिए खाते हैं
1: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके
0: बस।
1: बस मसाला डाल के
0: हाँ,
1: बन
0: और
1: जाता
0: उसमें ढेर सारा आलू, ढेर
1: है।
0: सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है। आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप
1: जी।
0: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
1: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
0: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती
1: जी
0: है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
1: जी
0: कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका
1: जी
0: फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
1: जी
0: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000 2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: आपका एक रूटीन होना जरूरी है, बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जैसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं,
1: जी
0: बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी
1: जी
0: होता
1: जी
0: है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान्य इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने?
0: जी,
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट है शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास

0: बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर ले लो,
1: अमरूद।
0: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
1: आंवला,
0: आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया, तो
1: करौंदा।
0: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं, जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
1: जी,
0: सकते हो।
1: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व तो किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
1: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
0: वो
1: है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा डाल
0: थाली
1: देते
0: में
1: हैं।
0: ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है, और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग-अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन, WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सब्जी में
0: आराम
1: भी,
0: से।
1: दाल में भी, बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं।
1: जी बिल्कुल, अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली, हमें भी उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के

उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ऊट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा सा साथ।

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: महबूबा आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन फिल्म शर्मिली नीरज सचिन देव बर्मन
1: हमें तुमसे प्यार कितना
2: ये हाल नहीं
0: फिल्म कुदरत मजरूह सुल्तानपुरी राहुल देव बर्मन आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खां के और संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटेली,
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म उमराव जान से, आवाज़ अलका याग्निक की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध धरती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर

0: सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लक्ष्य से। आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सैम बहादुर से। आवाज़ें श्रेया घोषाल और सोनू निगम की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओम जय जगदीश से। आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाज़ें सचेत टंडन, निकिता गांधी, मधुवंती बागची और सचिन जिकर की थी। गीत के बोल प्रिया सरैया की और संगीत सचिन जिकर का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संध्या रंजन 6:35 पर। 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का 7वां भाग, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने से बातचीत प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे। सात बजकर 45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम ताजमहल। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसमें आप सुनेंगे झलकी सेल्फी, लेखन एवं निर्देशन HS व्यास का। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। निर्देशक PL संतोषी पर आधारित, आलेख एवं स्वर जी शाम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात रंग तरंग, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। 6:35 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस का 305वां भाग। 6:45 कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 6:45 पर, इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का 8वां भाग, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुशी पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, इसमें आप सुनेंगे पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका को, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रिकार का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

कल सुबह 10 बजे आप सुनेंगे सेहतनामा। इसमें आप सुनेंगे पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन मंगेश सांगले का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले।

सुबह 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम रंग तरंग यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुषी पाठक। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे, संवादक और प्रस्तुतकर्ता अनुषी पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे सेल्यूलाइट के सितारे, अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। झरोखा आप सुन सकेंगे 6:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला स्वर साधना की अनुपरंपरा, किराना घराना का 8वां भाग, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंदला भरणे, प्रस्तुति अनुषी पाठक। जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। पॉप एक्सप्रेस, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी नया तजुर्बा, लेखन हरीश दीक्षित का, निर्देशक अनुराधा शर्मा। रात 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, इसमें आप सुनेंगे पार्श्व गायिका आशा भोसले को, आलेख एवं स्वर जयंत पत्रकार का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम होगा रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ माय गॉड 2 से। आवाज़ हंसराज रघुवंशी की थी। गीत के बोल कबीर शुक्ला, हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स के थे। संगीत हंसराज रघुवंशी, राही और डीजे स्ट्रिंग्स का था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: हंसराज रघुवंशी की थी। गीत के बोल कबीर शुक्ला, हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स के थे। संगीत हंसराज रघुवंशी, राही और डीजे स्ट्रिंग्स का था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार। संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों का स्वागत है। श्रृंखला जारी है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। किराना घराने की गायकी के बारे में बताने के लिए, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है जाने मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला जी। शकुंतला जी, किराना घराने की कौन सी वो बात है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे?
2: हमारा जो सूक्ष्म स्वर लगाव होता है
1: जी,
2: उसके बारे में हम आज थोड़ा विस्तृत स्वरूप से जानकारी ले लेंगे। सूक्ष्म यानी एकदम बारीक, बीच बीच में जो हम स्वर लगाते हैं, स्वर लगाव, ये भी किराना घराने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
1: जी।
2: इस घराने में प्रत्येक स्वर को अत्यंत सावधानी, शुद्धता और संवेदनशीलता के साथ लगाया जाता है, जिससे राग का वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने आता है
1: जी।
2: वो उस पर ही राग का स्वरूप होता है ज्यादा, यानी उस राग का जो स्वभाव है, भाव है। श्रुतियों का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग किराना घराने की गायकी में स्वरों के बीच स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का सुंदर प्रयोग किया जाता है
1: जी।
2: इससे गायन में कोमलता, गहराई और मधुरता आती है। प्रत्येक स्वर को पूरा महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: यहाँ पे किसी भी स्वर को जल्दबाजी में नहीं गाया जाता है, बल्कि उसे पर्याप्त समय देकर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है
1: जी।
2: यही कारण है कि राना घराने को स्वर प्रधान घराना कहा जाता है। मिंड और स्वर लगाव का जो सुंदर समन्वय इसमें है, मिंड के माध्यम से एक स्वर से दूसरे स्वर तक अत्यंत सहज और अखंड रूप से पहुंचा जाता है
1: जी।
2: इससे स्वरों का प्रवाह स्वाभाविक और अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। सूक्ष्म स्वर लगाव के कारण राग का रस, भाव और सौंदर्य श्रोताओं तक अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है
1: जी।
2: और राग की पहचान एकदम स्पष्ट हो जाती है। जयंत जी, गहन रियाज की जो आवश्यकता है,
1: हाँ जी,
2: ऐसा सूक्ष्म स्वर लगाव प्राप्त करने के लिए वर्षों की नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और स्वर पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। इसका अनुभव दिखाने के लिए
1: जी,
2: मैं बहुत ही एक वजनदार,
1: वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो सूक्ष्म लगाव आप कह रही हैं,
2: हाँ,
1: तो उसका अनुभव हमें किस राग के माध्यम से मिलने वाला?
2: कौन सा राग हो सकता है वजनदार राग?
1: आप राग दरबारी की बात करना चाह रहे हैं? वाह वाह।
2: ऐसा कहते हैं कि ये राग सिर्फ गले में बिठाने के लिए एक तप लगता है, एक
1: 12 साल लग जाते हैं इसे सिद्ध करने में।
2: हाँ, इसीलिए बड़े बड़े कलाकार जो है वही वो राग चुनते हैं।
1: इतना आसान नहीं।
2: उसका जो डेप्थ है, उसका जो स्वर पर जो रहने का जो तरीका है
1: जी,
2: वो बहुत ही गहरा है। प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।

0: आगे जाने से पहले एक थोड़ा द्रुत बंदिश दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा बोलती हूँ, क्योंकि उस्ताद आमिर खान ने ये सुंदर बंदिश बनाई, और ये जो मैं द्रुत बंदिश गाने वाली हूँ, ये बंदिश का महत्व क्या है? अनोखा लाडला रेमा खेलन को मांगे चांद।
1: अच्छा,
0: राम मांग रहा है खेलने के लिए चांद, लेकिन ये लिखने वाला जो है वो खान साहब है।
1: क्या बात।
0: हमारे भारत में जो सर्वधर्म समभाव का जो भाव है, वो भी हमारे शास्त्रीय संगीत में इतना प्रस्तापित हुआ है, और हम एक दूसरे को कलाकार के नाते देखते हैं।

0: वाह वाह वाह, अति सुंदर। शकुंतला जी, राग दरबारी की इस बंदिश को सुनकर के जो फिल्मी गाना गूंज रहा है मन में, वो बैजू बावरा फिल्म का गीत है।
1: वाह वाह, क्या बात है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी

ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

और जी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म सिलसिला से, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत शिव हरी का।

फौजी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म शराबी से। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी। गीत के बोल लिखे थे अनजान और प्रकाश मेहरा ने, संगीत बप्पी लहरी का।

0: सी एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
1: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

जी साथियों, गीत आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का। समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दिन से, आवाज़ मेघना मिश्रा की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत राम संपत का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु से। आवाज़ें पूरन चंद बड़ाली और प्यारे लाल बड़ाली की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत कृष्णा का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रॉकस्टार से, आवाज़ें मोहित चौहान और साथियों की। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए

0: भुगतान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, फर्जी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is

0: सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
2: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI।

0: पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
4: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
3: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जीन से, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत AR रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज़ ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के कटीलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा

खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: love you. और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरी जान अंडे के अंडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोष जी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दन भाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

रंजन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी 4 गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबलाबू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

1957 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। ये फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

सात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

साबित हुए जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की एक घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल मेरा मिस्र का बाजार भी हो सकता है, कोई धड़कन का खरीदार भी हो सकता है, कोई हो सकता है कातिल भी सफे यारा में, कोई हमदर्द दिलदार भी हो सकता है। अब तलक अश्क गिरा करते थे तन्हाई में, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। मुझ पे ताना ना कसो, मुझको ना पागल समझो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है। उसकी चौखट पे जाना, जरा थाम के दिल अपना, वहाँ इकरार भी इनकार भी हो सकता है।

का खोना बहुत जरूरी है, इश्क होना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है उनको पा लेना।

पहले दिल का खोना बहुत जरूरी है। जिसके सीने में दर्द ठहरा हो उसका रोना बहुत जरूरी है। उनसे होती है ख्वाब में मुलाकातें, मेरा सोना बहुत जरूरी है। सिर्फ यादों से घर नहीं बनता, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है।

सुबह लिखूं या शाम लिखूं, हर खुशी को तेरे नाम लिखूं, तेरा जिक्र लिखूं, फिर तेरी फिक्र और हर दुआ में तेरा नाम लिखूं, ख्वाब लिखूं या ताबीर लिखूं, तेरे इश्क को अपनी तकदीर लिखूं, लिखकर खुद को हीर तेरी, तुझको अपना राजा लिखूं, फिर सोचा तुझे याद करना छोड़ दूं, सोचा तेरा इंतजार करना छोड़ दूं, दिल को समझाया बहुत, भूल जा उसे, दिल ने मेरे मुझसे कहा, क्या चाहती हो, मैं धड़कना छोड़ दूं।

है मेरे गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में ये तड़पता है। कैसे समझाऊं इस दिले नादा को जो मेरा होकर भी तेरे लिए धड़कता है, कि मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरे हर सवाल का जवाब हो तुम, चांद हो तुम मेरी हर रात का, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम, मुझको कुछ इस तरह याद हो तुम जैसे मोहब्बत की कोई किताब हो तुम। बर्बाद है हम तेरी मोहब्बत में और हमारे अंदर आबाद हो तुम।

तुम यूं ही ना मिला करो हमें मंजिल की राह में, हम रास्ते भूल जाते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर। तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जिसे मांगते वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा सुकून, तुम्हें खोना खुद को खोना, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी, तुम्हारी खामोशी मेरी सजा, तुम्हारी आवाज मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी राहत, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। तुम्हें चाहने में हमने हद की भी हद कर दी, वरना यूं ही कोई दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं करता।

आंखों को समंदर कहूं तो कम है, तेरी बातों को सुकून कहूं तो कम है, तेरी मुस्कुराहट को गुलाब कहूं तो कम है, तुझे क्या कहूं दुनिया जहां कहूं तो भी कम है, के रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तू कोई झील है झरना है घटा है क्या है, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है दिलासा है दुआ है क्या है, शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना जाने जा, अब तो रूह भी आपकी दीवानी होती जा

मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, वो है सीधी सादी भोली वाली फिरनी जैसी आँखों वाली है मेरे सपनों की रानी। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग किया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गति लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
8: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
7: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war fighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for